0: बहुत गंदे तरीके से जो बॉडी को दिखाती है वो उसके बारे में बता रही
1: हूँ। बट ट्रेस
2: All staff, Armidale City, someone watching a TV show, please check your radios, you have an open channel. All staff, Armidale City, please check your radios, you have an open channel.